Silly. LG ले ले आयो नया LG Essential Series. अब किफायती मूल्य में refrigerator, washing machine, AC को complete range. 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% no cost EMI. नागरिकता भए पुग्छ. हर एक घर को खुशी घर घर में LG. LG, life's good.

0: नमस्कार। बिहान 7 बजे को आधी खोला खबर में प्रविधि कक्ष अशोक संग यहां स्वागत छ। आरती कुंवर संग जिला को पहला आवाज रेडियो आधी खोला को समाचार मूलक प्रस्तुति आधी खोला खबर एफएम 105.4 मेगाहर्ज र www.radioadikhola.org बाट लगन गरेर संसार को जुनसुक स्थान में बसेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूप में सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: यस आधी खोला खबरको साथमा गरिमा विकास बैंक लिमिटेड सुरक्षित भर पर्दो बचत तथा आकर्षक ब्याज दरका लागि प्रतिबद्ध। हिमाल सुनचाँदी पसल उच्च क्वालिटीका आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टीका साथ खरिद बिक्री असल तपाईकै सुख दुःखको साथी हिमाल सुनचाँदी पसल वालिङ बजार स्याङ्जा।

आदि खुला खबर को साथ में गरिमा विकास बैंक लिमिटेड सुरक्षित भर पर्दो बचत तथा आकर्षक ब्याज दर का लागि प्रतिबद्ध। हिमाल सुनचादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचादी पसल ग्वालिङ बजार स्याङ्जा।

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुनाको लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

0: सुनो सुना अले हम लोग आने में एक बजे के छाप
1: इस समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

आहा इस मध्य खाल के भाग का समय फिलहाल स्वागत कर दिया हूँ कार्यक्रम गांबसी के भाग में आज हमें आइतबार व्यवसाय में रहे तबाहर समक्ष श्रीमधुर खाल का भाग का हरलाई कार्यक्रम में आज रहे तबाहर संगे शह यात्रा करी रहे का सुन विशेष करी नया लोगित भाग का हरलाई रहे का सुन दिने भाग का हरलाई क्रम में दर्द में प्रस्तुति या गाड़ी बने क्रम में आज तो यहाँ रा आई दिन आपको क्रम में हमें और को भाग का जोर शो सोही भाग का संगे हमें छोटे व्यापारिक विश्राम तरफ लागने शो विश्राम पीछे पुनः उपस्थित होने नहीं शो यहाँ बने रेडियो सेट छोड़ी रा कतई न जान खुला

0: सुमित नहीं आइए हम लोग अनिमा 10 बजे तक था
1: इस समय को साथ में जेतुल सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िए पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखनुस आई।